0: আকাশবাণী আগরতলা এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে হিন্দি এবং পরে ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার বল। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन

0: अवसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खरंग संग तबुक थांगलायन दिनिनि ककथुम खनानि फासिं दिनिनि ककथुमो पुलावनो आनि याफाव दङ अतालनि बसकां साल नैजि स्नि सालमारिव महनपुर ब्लक बाय खबजाग विजयनगर ग्राम पंचायतनि कताल पाकानक फियगै रेजाकनाय अकताल भवन फियक मुंनि पान्दाव हुकबार तै हुकबार हामग्राय मन्त्री संग थांगै तै गुबुनि नांगौमानि बर' रक थाङै मानजागै बायानो तै आबुनु कारि ककथुम दङ रोचामुं हामजाकनाय रकनि बागै आबुंखा रोचामुं सोनाममुं एबा खोबा रोचामुं न जे बिनि ककथाय रक सुबुंमुं अबहाय कैसा ट्रेनिं साल बानि बागै ख्लायजाकना थाङै दङ द आर्ट एन्ड क्राफ्ट अफ सं क्रिएसन एन्ड मिउजिक प्रडाक्सन नि बिसिंतै अब अनलाइन नि बिसिंतै फ्रम फ्लेप ख्लायजाकैनाय कयलाय याचाक जागै दङ अ साल बानि ट्रेनिं अ फाइमानजाकना हांखे नरक हाबा नगो थाङै गोरोङै मानो हायाखाबा ककदुग दैबो गोरोङै मानो हायाखाबा इमेल दै ब मेल ख्लायै नरक नरकनि कयमुं रक रहरै मानो कयमुं रहरनानि पाइथाक साल अ तालनि अ जुलाइ तालनि थामजि सा सालमारिनि बिसिंग नरक कयमुं ब्लाय रहरै मानो रोचामुं जे सोनामना गोरों एबा कम्पस खायना गोरों बरक थाङैनाय मालाय मानो ओंखाय थाङै मालायनानि जरा साग्लायजाखा फुंनि द

0: মৌসুমি চাষ। লাউ প্রজাতির এই ফসলটি খুবই উপকারী। এখন বর্তমানে সারা বছরেই বাজারে শশা পাওয়া যায়। জল নিকাশি যুক্ত দোআঁশ মাটি শশা চাষের জন্য খুবই উপকারী। এই মাটিতে শশা চাষের জন্য রাসায়নিক বা জৈব সার থাকে। সাধারণভাবে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত শশার বীজ বপন করা ভালো, তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশিকা অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়। চারার বয়স 15 থেকে 20 দিন হলে পলিব্যাগের বদলে মাদায় চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি ব্যাগে 2টি করে চারা থাকলে মাঠে লাগানোর 6 থেকে 7 দিন পর অপেক্ষাকৃত দুর্বল চারাটি তুলে প্রতি মাদায় 1টি করে চারা রাখতে হবে। 6 থেকে 7 ফুট দূরত্বে 1 ফুট গভীর ও 1 ফুট ব্যাসের গর্ত বা মাদা তৈরি করতে হবে এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে 1.5 থেকে 2 মিটার। প্রতি একর জমির জন্য গোবর সার এবং ইউরিয়া 25 কেজি, 30 কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ও 30 কেজি মিউরেট অফ পটাশ দরকার হয়। এছাড়া চারার 3 সপ্তাহ ও 6 সপ্তাহ বয়সে 2 বার প্রতিবারে 10 কেজি ইউরিয়া চাপানো সার দিতে হবে। শশার বীজে সাদা পাউডার রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে 75 মিলি টিল্ট বা 1 গ্রাম ভেভিস্টিন বা 0.5 মিলি ক্যালেক্সিন গুলে স্প্রে করতে হবে। শশা জাত ভেদে বীজ বোনার 45 থেকে 60 দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। হেক্টর প্রতি 10 থেকে 20 টন শশা সংগ্রহ করা যায়। শুনলেন চাষের কথা, আজকের প্রসঙ্গ ছিল শশা চাষ।
1: আকাশবাণী আগরতলা এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে সংস্কৃত এবং পরে হিন্দি সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
2: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচিকা ঋচা ঝা। केन्द्रीय मंत्रिमंडल प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणेषु परीक्षासु अनुचित साधन प्रयोग से प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय सहैव दोषेभ्य कठोर दंड विधान सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। संसद भवन परिसरे प्रधानमंत्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मंत्रिमंडलीयोपवेशने एतत् प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। सूत्राणामनुसारेण प्रस्तावितं विधेयकं आगामी सप्ताहे संसदि प्रस्तुतं भविष्यति। अस्मिन् मध्ये परीक्षा परिष्काराणां दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेपेण राष्ट्रीय परीक्षाभिकरणेन 47 अधिकारिणः सेवातः निष्कासिताः। अभिकरणेन महाप्रबन्धकस्तरस्य वरिष्ठ व्यावसायिक पदानां तथा संघलोक सेवायोगस्य प्रतिभासेतु इति पटलमाध्यमेन 16 युवव्यावसायिकानां नियुक्त्यै आवेदनानि आमन्त्रितानि, विज्ञापनानि अपि प्रकाशितानि। अभिकरणेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् एतानि सर्वाणि उपायानि प्रोफेसर के राधाकृष्णन् इत्येतस्य अध्यक्षतायां निर्मितोच्चस्तरीय विशेषज्ञ समितेः अनुशंसानुसारं क्रियमाणानि सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणो जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः च नवदिल्ल्यां सीजेपी इत्येतस्य प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्था परिष्कार सम्बद्धाः प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः प्रशासनेन धैर्येण गम्भीरतया च श्रुताः। तेनोक्तं यत् प्रतिनिधिमण्डलेन 3 प्रमुखाः प्रस्तावाः प्रस्तुताः। प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गस्य निवारणाय कतिपयाः परिष्कारोपायाश्च प्रतिपादिताः। श्रीनड्डा अवदत् यत् प्रशासनं प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पुनरेकवारं विचारविमर्शं करिष्यति। नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गप्रकरणमाधृत्य छात्राणां विरोधप्रदर्शनानि च अधिकृत्य पञ्चमदिवसे अपि निरन्तरं जातेन कोलाहलेन संसदः उभयोः सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः कार्याचरणं सोमवासरपर्यन्तं स्थगितम्। प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनं प्रदत्तं यत् तत् नीट प्रकरणे सार्थकचर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीयशिक्षामन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिकप्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीयसमित्या कर्नाटकांध्र प्रदेशयोः बल्लारी गुंटकल रेलखंडस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य चतुष्षष्ट्यधिक द्वादशशतकोटि रूप्यकाणां अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आंध्र प्रदेश कर्नाटकयोः मध्ये रेल संपर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
3: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
2: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मंत्रिमंडलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रोमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षा क्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः संबंध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वति राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
5: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सम्मान दोनों देशों

0: लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि चनाब नदी में जलस्तर बढ़ना 20 से 23 जुलाई के बीच जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश का परिणाम है। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जलक्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की बाब सामेह को 3-1 से हराया। इसके साथ ही वो इस प्रतिष्ठित जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अगरतला এতক্ষণ শুনছিলেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদ। এখন রবি কিরণ অনুষ্ঠানে শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। আজকের শিল্পী স্বাগতা লক্ষ্মী দাশগুপ্ত।

0: दाल बिदाल हापांनि बिसिंथि ब गोबांमा बररक दियायलायो चुवायलायो आमा खायनो गोबांमा हामजाखनाय रंबो फायो ओंखा अ मेलानोथि गोबांमा बानिया रंबो थोंजागो हायखौ बानिया रं खलायजागो ताबुक कायसा लेभेलो आबो लिमिटेड ओङै दंलिया आबो गोबांमा आमसायनो गोरों जागै दङ हायदोबाना ताखौथे बुखुक सं ओंखाय दिनै हिंगायथ' 25th July ओंखाय दिनै हिंखाखै सालब्रैनि साल आबोथाय सालसिनि रमै खलायजागै दङ आ पान्दा थांनाय साल किसा 22nd July चेंसा जाखमानि आव आबरक ओंखा जों चिनि लाइभ माबा गोरों जाग ताबुक जे चिनि याक्सिया गोरा हायखाबा ताबुक जे ओं दं जराव ओंगै दं माने एबा चलिबै दं माने चिनि लाइभ माबा गोरों जा हुकुम माबा गोरों जा खारसि मिताय एबा खेबा चिबरि मिताय ओंखाय अबतो जों खोना लायखा फायदेखे ताबुकनि अ बेचेब ताबुकनि अ जराव जों खोनावै ना लायानो नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल फेस्टिभेल नथै क्विज प्रग्राम एबा खेबा क्विज पान्दा चिनर क्विज मास्टर रंगी फायमानजाक फायका बुखुक प्रियंका देवबर्मा
1: प्रियंका देवबर्मा क्विज मास्टर हिनि फायजाक खनाय दंनाय दाखुकते बुखुक संन दिनि चंग नांकुक मानि पांदा कायसा थुबै फायखा ओ पांदा अंखा क्विज कंपिटिशन एबा सोंमुं बाटाइमुं पांदा आव सोंमुं बाटाइमुं नो गोबांमा टपिक एबा कक बथमानो साइमान लायो तेइस हालायो अबनो चिनि तिनि कक बथमा ओंखा फेस्टिभेल अफ नेशनल एन्ड इन्टारनेशनल अबनो तुइनो चों दिनि पान्दा खालाय लायनाय आताबो आं स्कलारनो जरारिनाय बिनि सिनिमुं रिनानि बागै
2: हामबाय आनि बुमु ओंखा नपुरदेव बर्मा आं तिनि अर स्कलार होनै सपायजाक
1: आव हामबाय आं दाबो स्कलारनो जरारिनाय दिनिनि पान्दानि राइडा रंनो सावै खोनारिनानि बागै
2: आव हामबाय क्विज मास्टारनो आनु जरारिमानि बागै तिनिनि असोंमुं बाटायमुं राइडानो आं किसा साख्लाय रिवानो खायसा सोंनि पयेन्ट दंनाय 10 पयेन्ट खे फार्स्ट राउन्डनो खरगसानो कायबा खे सोंजाखनाय तमुं नमान्या हंखे क्विज मास्टारनो साख्लाय रिनाय सुमुंनि जरा ओंनाय 5 सेकेन्ड 5 सेकेन्डनि बिसिंगो मा सानाय मानथुं मायाथुं
1: आव फायदि हिंगे जों जेंलायानो नरक रेडि दा जतनो आं सोंनाय पुला बिना आसलंनो बिनि सोंमुं ओंखा हेमिस फेस्टिभेल टंथे पालाय जागो ब हास्टेव पालाय जा
3: अबनि आन्सार ओंखा हंखे लादाख
1: आव हामबाय बिनि क्वेशननि आन्सार बेलायखे खोनाथखे बस हायखोनारोखा हायदिसोम बन बिनि प्रखर लायन दे थाइसा सों बन सोंलायानो नुवायखाय फेस्टिभेल गोबां एबा कतरखे खोलाय जागो अब अब हास्टेव बिसि नुजा
3: अबनि मुंगाखे ओडिशा
1: आव बिनि अमनि आन्सार राइट न' फायदिसों ते कायसा क्वेशन सोंलायानो बन सांहाय फेस्टिभेल हिनिनै बेलाय खेनो हहम ददम खे पालाय जागो इंडियानि बिसिंग ब हास्टेव अब खलाय जाक
3: इ अबनि आन्सार रंखा ए मणिपुर
1: हामबाय अमनि आन्सार रंखा मणिपुर फायदेसों बिनि बागै या प्रख्रब लायन नेक्स्ट क्वेशन रंखा ब हास्टेव हार्वेस्ट फेस्टिवल बिहु हिनैने पालाय जाक
3: अबनि आन्सार रंखा आसाम
1: आव बिनि आन्सार रंखा आसाम फायदि बिनि बागै सों या प्रख्रब लायन ते थाइसा सोंबोनो सोंलायने बिनि बागै अबनो फार्स्ट राउन्डनि लास्ट क्वेशन 2025 बिशुव महाकुम मेला अबबो सिटिनि ओंगैने अर्गनाइज खायखा
3: अबनि आन्सार रंखांखे प्रेग्रास
1: आव बिनि मंगा युपिव हामबाय बिनि बागै क्वेशननि आन्सार खा हामखेनो बरिखा फायदि बिनि बागै या प्रख्रब लायन आव फायदिजों ते खरगसा बुखुंनो सोंनाय बिनि बुमु ओंखा अनुसा देवबर्मा ब हास्टेव ओनाम फेस्टिभेल न पालाय जाक
4: केरेला
1: आव बिन बिनि आन्सार ओंखा केरेला फायदि बिनि बागै जों या प्रख्रब लायन आव फायदि ते थाइसा क्वेशन सोंगानो लंगते फेस्टिभेल ओंगै पालाय जागो नाइसि ट्राइबनि बर' रफिया अब ब हास्टिनि बर' रक पालाय जाक
4: अरुणाचल प्रदेशनि बर' रक
1: फायदिते थाइसा सोंमुं सोंनाय बुखुंनो वेस्ट बेंगल हास्टेवबो फेस्टिभेलनो पालाय जागिया

0: आओ दो माया के तो कोक रे बिही आंचरन खा बिहु पालाई जागिया अंगो फाइदिबनो दे थाइसे सुमुं सुंगनाय तमिलनाडु हास्ते ओ बेलाखेनो फेमस फेस्टिवल हिनि साजागो अबोबो फेस्टिवल हिनि सिनिजा
1: मालिया
0: आओ दो माया के तो कोक रे आं साइडे ना पोंगल आरो हदन ददम केनो पालाई जागो अब बुखुनि पाइथक सुमुं उंखा बो हास्ते ओ पालाई जा खर्सिन दाइनो
1: त्रिप्रावो
0: आओ मखते तिप्रानो बेला क्या हम भाई आओ फाइडे ते खरक से बुखोक न सुनाई जुलिका देबर मानो हॉर्नबिल फेस्टिवल बेला खेनो इम्पोर्टेंट एबा नाकुक मानी फेस्टिवल अबोबो हास्ते ओ खलाई जा
1: नागालैंड
0: आओ आओ फाइडे ते थाइसा बनो सुंग सुंग लाइनै साबो चेंगरी रि इंडिपेंडेंट गणेश चतुर्थी फेस्टिवल हिने
1: लोकमान्य तिलक
0: आओ बिनि आंसर खा लोकमान्य तिलक फाइदि बिनि बागैया फोर प्रॉब्लम फाइदि सते थाइसा बुखुनो सोलायनाय बो हास्टो पालाय जक सेलिब्रेट गुटी एबा मकर संक्रांति फेस्टिवल हनैने
1: गुजरात
0: आओ बिनि आंसर खा गुजरात फाइदि बिनि बागैया फोर प्रॉब्लम फाइदि बुखुनो ते थाइसा सोलों सोलायनाय पाल के उत्सव सेलिब्रेट बो हास्टो खलाय जक
1: मालिया
0: आओ आं बिनि आंसर नै बिनि आंसर खा महाराष्ट्र व फाइदि बुखुनि पाइथकनि सोंनों उंखा बो हास्टो बिहु को उत्सव पालाय जक
1: अरुणाचल प्रदेश
0: आओ बिनि आंसर खा अरुणाचल प्रदेश आओ फाइदि ते खरकसा ताखुम सोंनाय बिनि मुं उंखा सैमसन देवर्मा बिनि सोंमुं उंखा सिरिलिलि फेस्टिवल खलाय जागो आबो बो हास्टो खलाय जक
2: आबो उंखा मणिपुर
0: आओ बिनि आंसर खा मणिपुर फाइदि बिनि बागैया प्रक्रबलाय आओ फाइदि ते थाइसा ताखुंनि बागै बनो सोंनाय बिनि सोंमुं उंखा दांडिया फोक डांस बो हास्टेनि हिने सिनि जक
2: आबो उंखा गुजरात
0: आओ फाइदिते थाइसा बु ताखुंग न सुंलाइनै जों बुफुरु नेशनल साइन्स डे सेलिब्रेट खलाय जा
2: आबोंखा 28 फेब्रुवारी
0: आव बिनि ओमनि आन्सर ग 28 फेब्रुवारी फाइदि बिनि बागै या प्रख्रब लाय फाइदि जों ताबुते थाइसा ताखुंग न सुंलाइनै मोंमंग फेस्टिवल बो हास्ते ओ पालाय जा
2: आबो साइमालिया
0: बिनि आन्सर ग नागालैंड फाइदि जों ताबुक लास पाइथक ताखुंग नि सुंमंग सुंलाइनै बनो थाइपुसम फेस्टिवल बो हास्ते ओ पालाय जा
2: आबोंखा तमिलनाडु
0: आव बिनि मनि आन्सर खा तमिलनाडु आव फाइदि ताबो स्कलार न जरारि फिरो फर्स्ट राउन्ड नि बुसुक मान खा साखलायनानि बागै हामबाय हिंके आं ताबो साखलाय रिनाय फर्स्ट राउन्ड आव साव बुसुक मान खा साव बुसुक पॉइंट मान खा फर्स्ट जे कायबा सुजां माने आबो खा बिना आस्लों न बिना आस्लों मान खा कायबा सुजां माने 50 खायने सेकेंड सुंजाखा अनुसार देवर मानो बनबो बिना आसलों सोंमा हाइकेनो सुंजाखा कायबा क्वेश्चन बो मांखा कायथाम हिंके बिनि टोटल स्कोर खा 30 पॉइंट आबोनि परे सुंजाखा खुगजुलिकानो सुंग सुंगानि कायबानि बिसिङो कायसामालिया हिंके बिनि टोटल स्कोर खा 40 पॉइंट हिंके लास्ट पाइथाग जे सुंग सुंजा माने इंखा चिनि ताखुक सैमसंग देवर मानो बो मांखा 40 पॉइंट बबो कायसा मालिया ताबो खाय हाय जराय फिरो आं क्विज मास्टर नो
3: आओ हम बाय स्कॉलर फर्स्ट राउंड इनो साइखनारि मानि बागै फाइदि आं ताबुक तेविसा सेकंड राउंड इनो आं तेसा चेंगै रिफिनाय ताबुक आं जरारि नाय स्कॉलर नो
0: हमबाई क्विज मास्टर न आनो जरारी मानि बागै आव आं ताबु सेकेंड राउंड नि राजा रक्न साखलाय रिनाय खरकसानो कायबाके सोंजाकनाय तमु न माया हंके आबो क्विज मास्टर न साखलाय रिनाय सुमुंनि जरा नि 5 सेकेंड नि बिसिङो मा सानाय मानथु माया फानो थाइसे सुमुंनि पॉइंट टंगनाय 10 पॉइंट खे
3: आव हमबाई सों ताबु तेसे सेकेंड राउंड नि न सों सुमुं सोंलायनाय बुखो बिना आसलों न सोंनाय चाइनीज न्यू इयर बरक बो फेस्टिवल ओ पालाय जाक
4: अबो आं मालिया
3: आं अबनि आन्सार खा स्प्रिंग फेस्टिवल बरक पालाय लायो फाइदि बुखो बिना आस्लों सों सों लायनाय ते थाइसे क्वेशन नभेम्बर मान्थ अब थैंक्स गिविंग हिनै नै पालाय जागो अबो बो हाकतर
4: अबनि आन्सार खा यूएस
3: आं बिनि आन्सार खा यूएस अबो फाइदि बिनि बागैया प्रख्रब लायन फाइदि बुखुंनो ते थाइसा सोंमुं सोंलायनाय बहागतर फेस्टिवल नि मेक्सिको अनर एन्ड रिमेम्बर्स हिनै पालाय जाक
4: अबनि आन्सारंखा डे अफ द डेड
3: आव बिनि आन्सारंखा

रोजाबुंनिफ्राय जोङो थालायोने आबुनिया बुङो जों हायनोहाय गावफोराव रोजाबुंनिफ्राय जोङो थालायोने खोनादेव रोजाबुंनारक जत्न'नि बागै थाखलाया नरक जत्न' खोनाथक जाबोयोने हिनैते जे रोजाबुंनारकनो खोनारि जागै दङ अ रोजाबुं नरक खोनाथक जाबोयोखिना हिनै

आसक जरा सकसरी देवबर्मा बाय जादुनी रिजाब जा रिजाब खाना बैख्या तब खाना रेजागाना बड़े रंगनी पांडा नुगुल कंज्यूमर राइट्स रेस्पन्सिबिलिटीज अपना रगे कोकलाम पांडा वा सैकना रेवाना मंजू देवबर्मा।

0: मापाइलायनाय आबो हंकाय काहामबा जिनि सेफ्टिनि राइडा आबो जों मा नायलायनाय आबोनि उनो हंकाय जों जिनि राइडा नायथक सिथरा काहाम हामिया जों बासिउने पाइनानि आ राइडावबो जों नायमा पाइलायनाय माने काहाम नुखायनया जों नायथक सिथरा बा निनि आबोनो सन्नानि जराव आबो जिनि बाहायखै जानो जाया आबरंनोबो जों नायै बायनो नांगौ आ नायनो थांदिनिबो फालनक रग' जोंनो पद्रे पदमानि रग बरग मा फुनुंनाय जों जाजागियासा जरा बोखाव स्राय स्राय हामजाबमानि बा निनि बायनो मोसौयासा जरा बरग जोंनो फुनुंनानि बरग मा फुनुंनाय सुदु आबैया जिनि तुबु मानि उल बरग जदि आमानै आं आरो काहाम होनै फुनुगै बरग दुइ फैगिया बा फुनुगै जों संना रोङिया जालुना रोङिया आबो हंखाय बरग फोरोङै रहनानै आबो आरायदा हंखाय बरग मा फोरोंनाय दे जों आरो काहाम मानै होनै तुबुयै फुनुगै रह फानो नगो फायै जों आ मानै रं जों संमानि जराव बा जे फोनाङै आबुनो जालुंमानि जरा रग' जाया रग नुग जाखाय देरामुं रं नुग जाखाय जों आमानि रं न' फिरगै मानो फियाबा गोबां मा फालनक रग' जों गाहामकै सियानि बागै बरग आब' फिरगै नारगनाया नरग खुलुगा आब' जों नारगमाया आब' खुलुग जागमानै जों नारगिया रायदा गोरै हायरग गोबां मा बरग फेमलगै दङ आब'नि बागै जों आब' सिना नांनाय जों आमतै नारगिया हंखाय आब'निबो जों थाङैनाय डिस्ट्रिक्टनि कमिसन दङ कन्जुमार कमिसन आजागारगो जों थाङै आब'नि बागै जों लिस्ट खायमानियो दे आब'नि उनाव जों टेबो रायदा दङ जे रायदाव बरग चिनियम मानै जों बायमानि उनाव गाहामदा ओंखा बा जों जालुकथिनिय जाया दा आबरग खबरा खबर नानानि बरग आबरग किन्तु रायदाव दङ फियाबा दाबुंनि जराव नुगजाखा आमदेहाय कुनु फालनि बरग
1: उजुगै
0: फाया नबो नुगजागिया फियाबा जोंनि रायदाव होंगाखाय आब' हायरगबो नांगौ बेलायखायनो फियाबा बरग जोंनो आमटि हायखाय कुनु सुबा सरथिनि रग' जोंनो सुबाया दे आब' हाय सिमिया टेबो रायदा गोबांमा दङ पैलानो जों लेखा गोरोंना नांनाय लेखा गोरों बा सिनानि नांनाय लेखा गोरों सिमिया सिनानि नांनाय जों अमानिनो पायखाय आनि संथिनि गानथिनि साथिनि आनि सागो बा आनि लांमाव आब' बाहायनो बा आनि कायसा नग' आब'त्राङै बाहाय आब' सादा सानो आब'रगबो जों बेलायखेनो जेरै नांगौ सुगो बेलायखेनो जों जेरै नायै जों फालनक रग' वानसुगै जों आब'रंनोबो बायै दुमना नांगौ आब' हायखैनो जों खोनानाबो नांगौ गोबां मा मानै जों बायथिनि रायदा रग' गोबां मा रायदा रग' आम' हाय बरग जों खोनाजांनाय मानै रग बायखेहांखै जों जानो खोनाजांनाय फन ओंखा टिभि बायथिनि फन ओंखा मबाइल बायथिनिबो नंखा आब' हाय जागारगो जों आरो नजालगै जों खोनावै गाहाम दाखोनायमान गाहाम खरां दाफाय गाहाम गायदा जालुकमान आब'रगबो जों बेलायखायनो नायखौगै नायै जों बुजियैनो सेवै मकल बायथांबाय नायैनो जों बायलायनानै बेलायखायनो नांगौगौ जों बायमानि आगुल' आ रां रुवै बायमानि रंनो जों नांगौमानि सामग फोनाङै दामानो आब'रंनो जों खुन्दुबाय खोनावै मकल बाय नगैनो जों गाहामखाय बायलायखाय बेलायखायनो जोंनि बागै जागौगौ
1: थाथिङो जे जों सालायमानि

0: नै बायथानि जेजों लेखा गोरों ओंना नांगौ होनि माने ओंखायनो नग्न'खुंनि बागै बायनाय रावखौ जों बोरै रावनो जों बोरै रावनो नग्न'खुंनो दननानि बागै दालिफि खायनानि बागै ओंखायनो जामुंनो मुंर' बायनाय ब मदम सदम बा सिनि थखम बायथानि ब सिनि बोरै रावनो बिसि सामुं नांजाबले ना ओंखायनो जों दाबो थाजिं सामुनि टिभि नायजांनाय बा खोनाजांनायनि स्पिकार बानांगा साउन्ड बक्स बानांगा ओंखाय आबरगले गाहामखौ सिनानै नांगौ तारमाने होमबा बोरै रगसे जामुं नंमुनो गाहामखौ नायगानि खानि बायफानो जों आसुग बोरै रगले आमरग आसुग बायथानि गोरै तारमाने होमबा जों जे जोंनो जे लेबेल रमानि जों जामुं नंमुनो पेकेट जात दं बोले सिनेमानि आ लेबेल ल' जे सैजाक दं माने जे मारि आ मारिव जों नायनो नांनाय नोंथाजों सामानि गाहाय आइ एस आइ मार्क हायगाबा एक मार्क द' दं दाय गायसा नायनो नांनाय आ मानैनि भेलिडिटि बोसोर माने ब बोसोर जराते हामियां थानाय गायसा जरा खाजाक बोले जे अ मानैयासो जरानि बेसेनावनो जाना नांनाय ओंखाय जों नायनो नांनाय जरानि सिगां आ मानै आनि बादा बायन गोबां गोबां गायसा तनखाखायथ' जों आ मानै खिबिमारनाय दा जरानि बेसेन जायमायाखाय निनि रां फैसाबो थांनाय ओंखाय नों नायनो नांनाय जरा लायजाखांखाय ब जाया ओंखाय जरानि बेसेन गोनां मानैनियावनो जों बायनानै मानलांबाय दा ओंखाय दाबुक बुखुंनो सोंना मोजां नांखाय जों दाबुक आमतैहाय मानैर' बायनानै थांखाय जों बोरै ओंनाय बर'र' जों ताम तामखाय तेबो गाहामखाय सिदायखोलाय तामखाय सायमाननानै खोलाय आब'नो गैसा सारिदा
1: हाँ कहाम कैसा संग शुदू मानसीमीया बीठी बेरा बो आं कैसा सना जन बीठी बेरा पाइना थी बो जन बीठी ओ आजागा बफुरो आबो सलाम जाखा मेनुफेक्चर डेट आबो तंगो ते
0: बेस
1: नम्बर तंगो ते एक्सपायरी डेट सुजाक तंगो बेलाखनो नांगमानी आबो जों सिना नांगौ एक्सपायरी डेट जेटा सिजाक आबो जों आजरानि बिसिङावनो जों आबो जाना नांगौ फियाबा गोबां मा बिथि जेटा फालमानि सिमिया लिकुइड जातीय कफ सिराप हाय बिथि रक

0: खालायो आब' सिमिया गोबां मा दाबु बिथि बिराय हामनि बागै जावै हामिया दारामं रग नुजागै दङ आब'नि बागै जों बालायखायनो नांगौगौ जिनि सिखुंनानै आब'नि बागै जों जुदि जामानि उलब' जों देरावै रग थांगा डाक्टार नायजों मानि परेब' जों हामिया सिमिया गोबां मा डाक्टार रग सैमानि जायाङै फोनो जोंनि साग रग जोंनि लांमावा गोबां मा बेराम रग जों मानजागौ बा मानजागै मानो ओमफ्राय आमदे हायरग मानजागब' जों आब'न' कन्जिमारनि जे जोंनि मानथाय बा कन्जिमारनि जे रायदाव दंमानि आजागारग' जों थाङै आब'न' जों क्लेम खायै जों आजागारग' केस फाइल रग खायै जों माननानै नांगौगौ दाङै हिंखाय जोंनि लांमा जे लांमा आब' कायसा देरामं फायगा हिंखाय जोंनि पुरा जोंनि थां टक टं साग जोंनि साग जायासे आमथि हायरग नुजागै मानो आब'नि बागैनो जों बायनोफोर रग' जानाफोर रग' बेलायखायनो जों आमथि हायरग नायखल जानानै नांगौ
1: दामनि हमाले जों गाहामोंना होननाय जामासे आब'नि आगोलो देबोसो हामियाङ जोंथ' जामानि माने मानो होनखालायलियो दा आब'नि बागैनो जों नायखल थायगोरलायो
0: दे आब' सिनिया कायसा मानैनो कायसा फालनग' कायसा बिनि रां आजाग' जे रांनि जे रां अजागाव नाहाका ओंखाय

मोजा कैसा फाल नगो आ मानै न न तेबो गबांग र गबांग मजा गरो नाय दङ जों आबरं नबो नायकल ना नांनाय आ गबांग मजा गाव न जों आमति हायखै जों बेलाय खैनो थगक जागै दङ आबरग ब अ मानै बिनि जे क्वान्टिटि दङ जे बिनि सैजा काजागाव आजागारो जों मा नायनाय नायै फाल नग्रग जों कक मा सानाय आबुनि बागै जों जिनि जे राइडाव जों थांनानै हिंगाय जिनि हायुं रग आमति हाय कुनु कमिटि सोसाइटि आमति हाय खाजा गोरैनि बागै जिनि बेलायखैनो जिनि दफारग आबो हायनांगौ जों आमति हाय खरांति साना थांखाय जों खरकसा खरकनि खरां दक्ति साखायबो आबो कुनु जों बरंथानि गाहाम तामहिननाय जिनि जे मानथायनि जे जे नांगौमानि आबो हायरक जों रोजा गियांगौ आबुनि बागै जों जिनि दफारगबो जों गोबां जागारग न नुजागौ जों हायखायि बाजारग थांखाय फालनग्रग जों डाक्टारग थांफानो गोबां जागा थांफानो जों जिनि फेमलग जागै जों दंलायो आबुनि बागै जों बेलायखैनो वान सप्ताय जों वान सगै आब' बायलायगनानै बेलायखैनो नां दैसा मानि बिसिंग जों गोबां जामुंग जों ओ रुटि रग निनि क्रिम वन हिन्दि बा रुटि केक आमति रगबो जों आब' गोजाम गोदाल सायमैया जों नखाय जालायो फियाबा गायसा केक फनंदि आबुनिबो गायसा जरा आजागाव खाजाक दङ जे अ जरानि बिसिङनो नोङाबोनो फालै माननाय फियाबा फालनक रग आबरग नायया सिया नगिया रंन हंखे बरक फालै आब' बाय बरक रां रग आजिउ आजिलायो निनि आनि बयनि गाहाम रग नायना रंन बरक वान सुगलिया आमति खायखेनो बरक बंनि रांन बरक आजिलाय दङ आबुनि बागै फायदि नों आं जतन' बेलायखेनो आबरंन नायगलना नांगौ आ जरा लाइजाक मानि रंन सावै जिनि लांमाव गोबां मा बेराम फाय दङ दे सराय बोसारंनि बिसिंगब जों सराय रक्त गोथै मानै जाव' आब' त' बरक फालपन बरक आब' आरायदारंन बरक फनु गिया जों आबरंन बेलायखेनो सिगंन नांगौ बारा आमजायरग दंनाय रंन आं सानामु सङ' नरक आबरंन नायै वान सुगै सराय रंन सारदि गोबां मा सराय सिकन सिकन सामुं सिकन सिकन जामुं सिकन सिकन तांमुं रगब जों हायखै फेमुलुक जागै दङ आबुनि बागै जों पैलानो जिनि जे राइडाव थानांखाय कन्ज्युमार प्रटेक्सन एक्ट पैला 2019 आब' गोदाल जे एक्ट खाजांनानै ताबुक जत' हास्तेवनो आब' नों ताबुक गेस्रग थाङै मानो आमनि बिसिंग जों मानै बायथिनि गोबां मा अनलाइन रगब जों मानै रग बायलायो ताबुकथ' अनलाइननि गायसा जराबो फायखाबा मानै जों नायै अर्डारखा फियाबा फायफ्र हंखाय जे जुदा रग जों मानजागौ आबुनि बागै जों जे कम्पानि सालामो आ कम्पानि बो दायि ते जे कम्पानिनि नाहारि फालनाय जेमन ताबुक दङ एमाजन खुब जे बेलायखैनो फ्लिपकार्ट हिन्दि एमाजन हिन्दि आमति हेरक फालै दङ ओंखाय जों आजागाव एमाजन बाय जे कम्पानि बरक टाइप खायै खायफनो किन्तु जों केस दुइजन कम्पानिन बरै मानो तै जिनि जे एमाजनब जों गायसा जों केस रग फाइल खायमानो आबुनि बागै जों 50 लाख आमति हाय रां रगनि बागै हिंखाय जों जिनि डिस्ट्रिक्ट कमिशन खाजाक दङ जों आबुनि बागै जों डिस्ट्रिक्ट कमिशन रग आब' केस रंन जों फाइल खायमानो पैला आब' हंखाय रां कम 50 लाखनि बिसिङ हंखाय आबुनि बिसिङ तेबो दङ जों 50 लाखनि साखा 1 करोड़ जरा रंखाय जों जिनि स्टेटनो स्टेट कमिशन रगनै खाजाक दङ आजागा जों थाङै मानो

प्रेसार कुकार पाइथिनीब आतला माननाय नों जै जे मानैनो पायो आजागाव गायसाबनि मारि गोनां नायै बेलायखायनो वानसुगै पायना नांनाय पियाबा ओ मारि गोरि हिंगायनो रक्ता पायदि पायखांखाय नों आ मानैयो संथिनि तांथिनि

0: कालचार बासा मानिजा जे मानै आबोखाय एकमार गनां जोंमाननाय आबोबोसों सिनि भारत सरकार बायखायसा आबो साख्लाय जाखायसा सिनोरजा आबो नायनोसों मापायलायनाय मुखिदों थायखिदों गायथिनि मुखिदों बुसलै रगो सरिसे आ एकमार गनां अ जरानि बिसिङो कायखैनो अ जरानि बिसिङो नब बुसलै आसायनाय अ जरानि बिसिङो न आबो थायनाय अजरानि बिसिङो न आबो अजे राइदा आरायदा रं न सोंनाय न खालायलायनानि बेलाय खेनो नांगौगो आबोनि बागै साथिनि पाइथिनि आबो न जिनि मकल रं न सोंफि गाहाम गाय नायै मकल स्राय स्राय खेनि जिनि मकल नायै खानावै सिया हंखाय सों सोंलायना नांनाय नायै बुजियैन सों जिनि नखं रगो अमानै रं न सों पाइलायना नांनाय साना साथिनि बसों बेलायखैनो बिथि बिराय साथिनि बुखक संन आंखयो जे रायदा सैजाक आ रायदान जों नायै मासालायनाय ते चिनि बिथि बिराय पाइथिनि ब जों दसता रग टेबलेट रग पाइखेंखाय गायनि जाखांखाय ते गायनि रग दंरखाय आरो बिनि जे डेट एक्सपायरि डेट रग पाइ रग थांगो आबनि बागै जोंआबो सैमा दननाय बिनि सैया कुइनै जों मातनलायनाय जों उलो नायावै जावै जिनि लांमारक फोनो जों सलायमानो जाया फनङिमानो आबनि बागै आं जतनन बुखुक संन कयो आबरंन नायै नरक निजिनि लांमारक निजिनि नखं रग जाय जायखै दंलाय जाबाय दि आबो हायखैनो जों दंलायनो फायदि नायलै खालायलायनो आमदै हाय जों वानसंलायनाय
1: बेलाय बेलाय हामबाय जिनि दिनै बान्दाव फाय बुखौ नोंसोर गग्लाम सालायमानि बागै गुबुननि जरा रग दासा जोंनो न बान्दाव निहिनोनो आमते
2: खुलुमबाय खेन सौ थांनानै हामबाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए

0: आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने को पाए से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति

0: वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। खेलों में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनके अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अगरतला श्रावण मास व्यापी পদ্মপুরাণ পাঠের অনুষ্ঠানে আজ শুনবেন পদ্মাবতীর আগমন এবং মনসার উক্তি। পরিবেশনায় বুদ্ধদেব সাহা এবং সহশিল্পীরা হলেন সুব্রত বিশ্বাস, রিমা চক্রবর্তী, মণি সাহা, সুমন রায়, তনয়া চক্রবর্তী, গীতা সরকার, রুমি চৌধুরী, জয়ন্তিকা রায় এবং পার্বতী আচার্যি। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে বুদ্ধদেব সাহা এবং সহশিল্পীদের সৌজন্যে। পদ্মপুরাণ অনুষ্ঠানের বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন বুদ্ধদেব সাহা এবং সহশিল্পীদের সঙ্গে। ফোন নম্বর 9774919660।

0: ensure the smooth conduct of the occasion, which is expected to draw millions of devotees from across India and abroad. Prakash Das for Akashvani News.
1: Dev Shayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. On to sports. In men's cricket, India will take on host Zimbabwe in the second T20 international of this three-match series at Harare today. The match will begin at 4:30 p.m. in the afternoon. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Same 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Jandu Kumar, clinched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश टोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में

0: प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: रिजर्व की 32 प्लांटों और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली

0: प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम

0: उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपनी कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के नाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী আগরতলা, এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি। আগরতলা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পরবর্তী 24 ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় তাপমাত্রা থাকতে পারে সর্বোচ্চ 34 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। আজ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 25.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। একটি সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ত্রিপুরার কয়েকটি জেলায়। জানিয়ে দিলাম আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তি, এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচি। বিকেল 5:10 হিন্দি ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান চিত্রগীতি, বিকেল 5:45 অনুষ্ঠান গজল বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে, সন্ধ্যে 6:05 সমূহগীতি শিক্ষার আসর, সন্ধ্যে 6:30 জাগৃতি অনুষ্ঠানে পথ দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ পেতে হলে প্রসঙ্গে মিতালী নন্দীর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হবে, সন্ধ্যে 6:50 লোকগীতি শিল্পী তপন রায়, সন্ধ্যে 7:00 ককবরক অনুষ্ঠান, সন্ধ্যে 7:45 ককবরক সংবাদ, সন্ধ্যে 7:55 স্থানীয় বাংলা সংবাদ, রাত 8:05 জেলার চিঠি, রাত 8:15 দিল্লি কেন্দ্র থেকে শুনবেন সংসদীয় পর্যালোচনা, রাত 8:30 আজকের প্রসঙ্গ, রাত 9:00 নজরুলগীতি শুনবেন শিল্পী ধীরেন বসু, রাত 9:15 স্পটলাইট, রাত 9:30 শুনবেন নানা রঙের গান, রাত 10:00 আকাশবাণী সঙ্গীত সম্মিলন অনুষ্ঠান দিল্লি কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হবে। জানিয়ে দিলাম আমাদের আজকের পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচি। আকাশবাণী আগরতলা, আমাদের প্রথম অধিবেশনের এখানেই সমাপ্তি। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে বিকেল 5:00। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বেলা 2:32 হয়ে 4 সেকেন্ড।

0: আকাশবাণী আগরতলা শুরু হলো আমাদের আজকের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 236.4 মিটারে, অর্থাৎ 1269 কিলোহার্জে। এখন শুনুন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে হিন্দি এবং পরে ইংরেজি সংবাদ।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बीच सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा हो रही है। भाजपा ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
2: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत देश के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपनी उपलब्धियों तथा समर्पण से हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे।

0: জগজিৎ সিং এর কণ্ঠে আকাশবাণী আগরতলা। এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিশাল শর্মা। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजेपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
3: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
4: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही

0: ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अगरतला एखन सुनबेन समूह गीति शिक्षार आसर।
2: Bringing to you community singing song and lessons in Tamil language, the lyricist Kavimani, the singer Vinayagam Pillai, composer and lesson conductor T.K. Jayaraman, and the participants are students of Children's Garden Higher Secondary School, Chennai.
3: Namaskar, bachon. Aaj main aap logon ko suprasiddh kavi Kavimani Deshik Vinayagam Pillai krit एक गीत सिखाने वाला हूं। आप सब साइकिल देखे होंगे, है ना? आप में से बहुत लोगों के पास साइकिल भी होगा। उस साइकिल के ऊपर यह कविता रचाया गया है। आजकल के जमाने में साइकिल का बोलबाला बहुत कम पड़ गया है। साइकिल जो है दीनों का बंधु माना जाता है। साइकिल जो है दीनों का बंधु है ही, पर प्रदूषण के इन दिनों में साइकिल यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ है। अगर हम धुआं और प्रदूषण रहित हरियाली से भरी धरती में वास करना चाहते हैं तो साइकिल जैसे यातायात साधनों को स्वीकार करनी चाहिए। उतनी महत्वपूर्ण साधन साइकिल के ऊपर यह गीत रचाया गया है। ठीक है, अब इस गीत के हर वाक्य को धीरे धीरे व्यक्त करने जा रहा हूं। आप इसे लिखिए। सही लिखेंगे ना?
4: तंगये पार,
5: तंगये पार,
4: तंगये पार,
5: तंगये पार,
4: साइकिल वंडी,
5: साइकिल वंडी,
4: इदुवे पार,
5: इदुवे पार।
4: அடுத்த வரி, சிங்காரமான
5: சிங்காரமான
4: வண்டி,
5: வண்டி,
4: சீமையிலே
5: சீமையிலே
4: செய்த வண்டி,
5: செய்த வண்டி.
4: அடுத்த வரி, இரும்பாலே
5: இரும்பாலே
4: செய்த வண்டி,
5: செய்த வண்டி,
4: எங்கெங்கும்
5: எங்கெங்கும்
4: ஓடும்
5: ஓடும்
4: வண்டி,
5: வண்டி.
4: அடுத்த லைன், மாடு இல்லை, அத மாடில்லைன்னு எழுதியிருக்காங்க. மாடில்லை,
5: மாடில்லை,
4: குதிரை இல்லை,
5: குதிரை இல்லை,
4: மாயமதாய்
5: மாயமதாய்
4: பரந்திடும்
5: பரந்திடும்
4: பார்,
5: பார்,
4: தீயில்லை
5: தீயில்லை,
4: புகையும் இல்லை
5: புகையும் இல்லை,
4: தீவிரமாய்
5: தீவிரமாய்
4: சென்றிடும் பார்,
5: சென்றிடும் பார்,
4: காலாலே
5: காலாலே
4: மிதிப்பதனால்
5: கடும் விசையில் கடும் விசையில்
4: போயிடும் பார்,
5: போயிடும் பார்,
4: ஒன்றன்பின்
5: ஒன்றன்பின்
4: ஒன்றாக
5: ஒன்றாக
4: உருளும்
5: உருளும்
4: பைதாக்களை
5: பைதாக்களை
4: பார்,
5: பார்.
4: பைதாக்கள்னா என்னன்னு தெரியுமா?
6: சக்கரம்,
4: கரெக்ட், கரெக்டா தெரிஞ்சிருக்கே உங்களுக்கு. அடுத்த வரி, அக்காளும் தங்கையும் போல்
5: தங்கையும் போல்
4: அவை போகும்
5: அவை போகும்
4: அழகை பார்,
5: அழகை பார்.
3: அப் மை கீத் சிகானே வாலா ஹூ. யே கீத் கஹர்வா தால் மே நிபத் ஹை. इस गीत को गाने के पूर्व हम आप लोगों को दो घुटों में विभाजित करते हैं, ए ग्रुप तथा बी ग्रुप। गाने में गुनगुनाने में दो घुटों में ही प्रस्तुत करना होगा।

साइकिल पर गीत है, हालांकि साइकिल का बिल कहां है। अब बिल की ध्वनि ए ग्रुप एक तरह देंगे, बी ग्रुप और एक तरह देंगे। ये जो बी ग्रुप है, इस बी ग्रुप को दो घुटों में विभाजित करना है। ए ग्रुप स गाएंगे, बी ग्रुप प गाएंगे। बी का जो दूसरा घुट है वो ग गाएंगे। अब घंटी की ध्वनि मुंह से।

आखिर में एंगेंगुम ओडुम वंडी ये जो है इसको चार मात्रा तक उसे सस्टेन करना है। क्या मैं गाकर दिखाऊं?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आकाशवाणी अगरतला कक्तमा पर्यो किशोर जमातिया तिनी कक्तमा बुबक रकङ्खा केन्द्र निर्माण मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान विनी मन्त्री आशोक थाइया कर्खा मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी खना कक्ति सालनी फुङदाम चिसावा आकाशवाणी निमन्त्री

0: बाले।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: আকাশবাণী আগরতলা। এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান সমাচার সন্ধ্যা।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया।

अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने

0: विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वे स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और

0: सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी अगरतला। এখন শুনবেন নজরুল গীতি ধীরেন বসুর কণ্ঠে।

0: कुटुंब में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल हैं बैरन रतिया कैसे आऊ।
1: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। शी बिगिन्स हर रिसाइटल विथ ठुमरी कंपोज्ड इन राग मिश्र तिलक कामोद सेट टू दीपचंदी ताल। बैरन रतिया कैसे आऊं।

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामोद ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक कामोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी, रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।